0: 92.700 FM का गया और सरी 93.700 FM की नॉन टाइम राइट नाउ वी गेट 26 डाउन 8
1: हार्ट FM
0: वी गेट मैगी कमिंग थ्रू दिस नेक्स्ट सॉन्ग इज ब्रॉट टू यू बाय बर्ड स्ट्रीट 45 ट्विन पैक पंगदलवंग बासो टू टाइम्स द इनोम टू टाइम्स द नुट्रेसोन 775 लॉन्ग एसआरपी पर बासो बिली ना